0: 어이, 이게 뭐야? 서플리먼트 스키겨우. 저.
1: 예티 कार्पेट किंदा कार्पेट को पछाड़ी यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेट को शहंशाह।

0: OSR Digital, entertaining the nation.
1: तिमी ठीक छौ?
2: ठीक छौ। हजुर को हो?
1: आमा।

0: दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक आवाज।
1: Come on there, work for me.

0: कहाँ गएछु? ढिलोबेसीलाई ड्रेस लगा।
1: ओए सुन न, आज किरणको
0: वर्षा रावत।
1: वर्षा रावत खोइ कहाँ छ?
0: ऊ त्यहाँ

World Ingo Festivity Offer. अब Poundhouse 1 वर्ष को 200 Mbps Internet और Net TV. साथ में Dual Band Router, Nokia Beacon 1.1 Mesh Router और Net TV Set-Top Box. मात्र रूप 1200 प्रति महीना में. शर्तें लागू होने चाहिए. छिटो बने गई World Ingo.

0: को पैसा सीधे खल्ती वॉलेट मा।
1: नेपाल को कुने पनी बैंक खाता मा वा 45,000 भन्दा बढी IME काउंटर मार्फत
0: आफन्त को हाथ हाथ मा पुर्याउन IME गरौं।
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपाली को विश्वास
0: IME गरौं।

0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक काम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना मा वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबै अस्त्र को शक्ति बोकी को 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया मा साथ मा IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो

0: Us Bank Limited. Access to all.
1: Tapal aile sunde onuncha Radio NRN 99.1. Sabeka lagi sutana.
2: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो म्युजिक मस्ती।

एसोस एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ्स गुड।

0: खोलना
1: के रे
0: त्यो मन को कुरा खोलना
2: खोलना प्लीज
1: अहिले झट्टारोल दिन्छु अनि फेरि
2: त्यसो भए आउ न त बस
1: तिमी नै बस ल
0: बुझना